कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी कर लेते।

अक्सम अदाएं ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है। लुकिंग मेरा अक्सम अदाएं ब्यूटीफुल, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है।

मौसम अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझ तू कितना ब्यूटीफुल है, इसलिए मेरा मौसम अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है।

0: वनमा जाँदा सलाई लाइटर जस्ता आगोजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदेऊ। लागिहालेमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौ।
1: डिभिजन वन कार्यालय तनहुँको जनहितमा जारी सन्देश।
2: सूचना एस तनहु सेवा हस्पिटल दुलेगौड़ा बीपी चोकमा यही जेठ 16 गते शनिबार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका पेट मुटु छाती सुगर तथा थाइरोइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्णराज अधिकारी हार्जोनी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर मेघराज लामिछाने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका एनोमेली स्क्यान थाइरोइड सहित भिडियो एक्सरे डाक्टर सन्तोष बराल छाला यौन कुष्ठ रोग एलर्जी तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर जे महर्जन र मानसिक तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुभाष विजय महत बिरामीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आउनुहुने भएकाले सम्बन्धित विशेषज्ञसँग सेवा परामर्श लिन सम्पूर्णमा अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीको लागि तनहु सेवा हस्पिटल दुलेगौड़ा बीपी चोक तनहु फोन नम्बर 0654143777 मोबाइल नम्बर 98564443।
3: कृषि विकास कार्यालय तनहुको अनुरोध
4: प्राङ्गणिक कृषि उत्पादन।